जैसे जल में है कमल निरालम मुर्गाई नैसण सुरत शब्द भव सागर तरिय नानक नाम वखाण पंछियन में हंस मृग राजन में सारदूल

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा, सब त्यावै है सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा, हर त्याव संतो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जोग मह सुखवासी, से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी, जिन हर निरभाओ त्याया जी तिन का भाओ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनिक अनेक अनंता, तेरी अनिक कर है हर पूजा जी, तप तापै है जपै है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी जो पावै है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे कर है सो होई, तुद आपे सृष्ठ सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी जो सबसे का जान होई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हम पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनों कृपा कर है तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जानाए हे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणै, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखै है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरडै पहिले निवासा, पाणी पावक तिन है किया,
पंक जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हों जती सती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणमत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी मरिया, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै,

सहाय। दुष्ट दुख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता। किलबिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जय भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काल।

भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर्थद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सुबह बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ही बखान्यो।

सेवक सिक्ष सब करतारा, मोरच्छा निज कर द करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी यासा, तोर भजन की रहे प्यासा। सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसा हांदे साहु,

छे गुर छे उपदेश गुर गुर कवे सनेग बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए रहाओ विसोए चसियां घड़ियां पहरां थे ते वारी माह होआ सूरज ए कुरथ अनेक नान करते के केते वे सं रागत नासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आण दो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ सहस तब नैन नैन है तुह कौ सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसदे चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत सुपावे सो आरती होए हर चरण कवल मुकरंद लोभ तमनो अन दिन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग का होए जाते तेरे नाए वासा राग गौड़े पूर्व महला चौथा काम क्रोध नगर भरिया मल साधु खंडल।

0: साचति अमृत खाए,
1: इस ठाकुर को रख मनमाए,
0: जे प्रसाद सुगंधत तन लावे,
1: इसको सिमरत परम गतावे,
0: जे प्रसाद बसे सुख मंदर,
1: इसे त्याय सदा मन अंदर,
0: जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
1: हार पैर सिमरो तिस रसना,
0: जे प्रसाद रंग रस भोग,
1: नाम सदा त्याय त्यावन जोग,
0: जे प्रसाद पाट पटंबर हटावे,
1: इसे त्याग तपन पावे,
0: जे प्रसाद सुख सेज सोई जे,
1: मन आठ पैर तथा जस करी जे,
0: जे प्रसाद तुत सब को माने,
1: मुक्ता को जिस रसन पकाने,
0: जे प्रसाद तेरो रहता धर्म,
1: मां सदा त्याय केवल पार ब्रह्म,
0: रब जी जपत दरगह मान पावे,
1: नानक पसे थी कर जावे,
0: जे प्रसाद आरोग कंचन दे,
1: ये लावो तिस नाम स्नेही,
0: जे प्रसाद तेरा ओला रह,
1: मन सुख पावे आला जस कहत,
0: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके,
1: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके,
0: जे प्रसाद तुत को न पहुंचे,
1: मन सा सा सिमरो प्रभु जे,
0: जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे,
1: नानक ताकी भगत करे,
0: जे प्रसाद अपूखन पहरी जे,
1: मन सिमरत को आलस की जे,
0: जे प्रसाद असव हस अस्वारी,
1: मन सिख प्रभु को कबू ना बिसारी,
0: जे प्रसाद बाग मिलक तना,
1: राग कोई प्रभु अपने मना,
0: जिन तेरी मन बंत बनाई,
1: उठक बैठक तिसे त्याई,
0: तिसे त्याई जो एक अलख है,
1: यहाँ वहाँ नानक तेरी रखे,
0: जे प्रसाद करे पुन बहुदान,
1: मन आठ पैर का तिसका ध्यान,
0: जे प्रसाद तू आचार व्यवहार,
1: इसको को सा सा चितारी,
0: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
1: सोबर सिमर सदा रूप,
0: जे प्रसाद तेरी नीति जा,
1: सोबर सिमर सदा दिन रात,
0: जे प्रसाद तेरी पत्र है,
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे,
0: जे प्रसाद सुने करण नाद,
1: जे प्रसाद पे कह विस्मान,
0: जे प्रसाद बोले अमृत रस,
1: जे प्रसाद सुसहजे बसना,
0: जे प्रसाद हंस कर चले,
1: जे प्रसाद संपूर्ण फले,
0: जे प्रसाद परम गत पावे,
1: जे प्रसाद सुख सहज सुमावे,
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कतला,
1: गुर प्रसाद नानक मन जा दो,
0: जे प्रसाद तू प्रकट संसार,
1: इस प्रभु को

जानते सबको बरसावे। सास संसो वासुदेवा सास अमृत गायन नानक साथ के संग सफल जनामा दर्शन पेटल हो निहाल साथ के संग रथ पर हरे सास अंग मिश्रित हर मेला साथ के संग ना मिलता जावे नानक उदरे सास सुन लसे सास अंग हर के गुण गाओ सास अंग सर पर निस्तरे साधु के संग कट कट लिटा सास अंगत पई हमारी नानक साथ के टे संजोग जेता सुने ते

मनमाहे। ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्मज्ञानी जगत ब्रह्मज्ञानी जाने, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सजीवनी

जगत त्यागे दुष्ट संग कर पूजे सकल पाप ब्रह्मा इस भक्ति की मत उत्तम होवे मानता नरके विसंप्रीत नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे राम नाम आत्म में सोते उस पंडित के

0: के दुखन त्रिक जोन किरमाए
1: सांतन के दुखन तृष्णा में जले
0: सब के दुखन सबको चले
1: सा

देत प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक की राखे निवारा नानक सो सेवक सास सास मारे अपने सेवक की सरकार राखे अपने सेवक को नाम जपाई ताकि कत में कोई न लाके प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे नानक सो सेवक दिस प्रगटाया

भागी पाइए। परसा जगत निर्मल रीत पार ब्रह्म की दरगे गवे मन सतो का तब ध्याने अमृत जिस पे के हो संत नान जिस पावे तिस रहे मिलाए सतगुरु पूरण विवेक अगम गोचर प्रभ निर्वाणी ताकि नीमत गिने न पाए चरण कमल हृदय सुमरे नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने अमृत पीवे न

रहो संत हो टोल साथ बहु तेरे डिठे सन्यासी तपस्ये है मुखो ए पंडित मिठे वर्ष एक हो फिरियो किने नह परचो लायो कहती ही कहती सुनी रहत को खुशी न आयो हर नाम छोड़

0: गोरे अमरदास सच साल पन ते दल जीतो इब जुद कर पलो पोहाल ते जो तना निरपत नाथ नानक बार गुरे अमरदास सच साल पन ते दल जीतो इव जुद कर।
1: कनहर बूंद बसो रो मावल कुसम बसंत गणंत ना आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के

मन सुर तुम्हें मन बुद्ध मन सकल पवन की शुद्ध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मग न चल पंथ मन धर्म से तीसन बंद।

0: नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
1: नमो पान पाने नमो बाद बादे
0: अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे
1: अनंगी ब्रह्माते समस्ति विभूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
1: नमो
0: जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता
0: अपेक्षी अपरमी अभोगी अभुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे।

तात मातना जात जाकर जन्म मरण बहीन लोग जो देखे बिके जग जाप ही जे जाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार काल हीन कला सुजुगत काल पुरख देश अंग राग न रंग जाके जात पातना नाम आप रूप

भुजंग पर्यात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्रवर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे।

0: ना चित्र ना मित्र परे है पवित्र
1: भक्ति छंत प्रसाद कथते की आचर्य देशे की आभज
2: विषय
1: लोके की आदत सुख
2: करने
1: की राजन परवा है की धर्मंग दूजा है
2: के सर्वा पढ़ने
1: की जगतंग प्रीति है की छत्र

0: नि साकं शरीक है अमितो अमीक है
1: सदैवं प्रभाहे जय है जाहे
2: भगवती चंत और प्रसाद कथते के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं
1: हमें सुल सलाम है समस्त सुल कलाम है
2: साहिब दिमाग है के हुस्नन चराग है
1: के कामल करीम है के राजक रहीम है करीमुल कमाल है के हुस्नल जमाल है
2: राज है गरीबुल निवाज है
1: हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है
2: कलंकन प्रणास है समस्तुल निवास है
1: अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है
2: समस्तुल जुबा है के साहिब के राह है
1: के नरकन प्रणास है बहिस्तुल निवास है
2: सर्वुल गवन है हमेशुल रवन है
1: तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है
2: परम ईस है समस्तुल अदीस है
1: अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है
2: जमा है अमीकुल इमा है
1: करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है
2: अचलन प्रकाश है के अमितो सुभास है
1: के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है
2: अमितो पसा है के आत्म प्रभा है
1: के अचलन अनंग है के अमितो अपंग है
2: मधुबार चंत प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम
1: हर बर गंज हर नर प्रबंज
2: अंगन प्रणाम मुनमन सलाम
1: हर नर खंड बर नर अमंड
2: नास मुन मन प्रकाश
1: गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम
2: अंग आसन अपंग
1: उपमा पार गतमित उदार
2: जल थल अमंड दिस विस अपंड
1: जल थल महंत दिस विस व्यंत
2: अनास तिर तर तुरास
1: आज अनुभा हो एक सदा हो
2: कार आत कथनी अनास
1: खल खंड ख्याल गुरबर अकाल
2: कर प्रणाम चित चरण नाम
1: अंचिज गाता जिचना बात
2: अंचिज गात अनरंज बात
1: अंटुट पंडार अंठड अपार
2: नीठ तरम अत टीठ करम
1: अनब्रणनंत दाता महंत
2: हर बोल मना चंत प्रसाद करुणालय है हर कालय है
1: खल खंडन है मैं मंडन है
2: जगदेश्वर है परमेश्वर है
1: कल कारण है सब बारण है
2: जित के तरण है जग के करण
1: मन मान्य है जग जान्य है
2: सर्वम पर है सर्वम कर है
1: सर्व पास्य है सर्वनास्य है
2: कर है विश्वम्बर है
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
2: ब्रह्मंडस है खल खंडस है
1: परते पर है करुणा कर है
2: जपा जपे थपा थप है
1: अकृता कृत है अमृता अमृत है
2: अमृता अमृत है करुणा कृत है
1: अकृता कृत है तरणी कृत है
2: अमृतेश्वर है परमेश्वर है
1: अकृता कृत है अमृता अमृत है
2: अजपा कृत है अमृता अमृत है
1: नर नायक है खल कायक है
2: संबर है करुणालय है
1: रिप नायक है सर्व पायक है
2: पंजन है अर्गंजन है
1: रिप्तापन है जप जापन है
2: अपलंकृत है सर्वाकृत है
1: कर्ता कर है हर्ता हर है
2: मातम है सर्वातम है
1: आतम बस है जस के जस है
2: जन प्रया छंद नमो सूर्य सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे
2: नमो अंधकारे नमो तेज तेजे
1: नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे
2: नमो राज संताम संशांत रूपे
1: नमो परम तत्तन अतत्तन स्वरूपे
2: जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने
2: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो पूज पूज नमो पान पाने
2: नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे
1: नमो इंद्र इंद्रे अनादन विभूते
2: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
1: नमो आस्यासे नमो बाक बंके
2: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
1: त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
2: अजय अलय अभय अभय
1: अभू अजू अनास अकास
2: गंज अपंज अलख पख
1: अकाल दयाल अलेख अपेख
2: नाम अकाम अगह अटाह
1: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
2: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्मं अपर्मं अगंजे अलिखे

0: श्री भगवान की पाए कृपा होते एक रति बिन एक रति के को तुरंग को रंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे इते पै तो कहाँ पै पूपत अंध को नांगे ही पाए पधारे गुंजत गुण का जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे
1: पवन के पुपनी जाय पिचारे
0: श्री पद श्री भगवान पजे बिनंत को अंध के दाम सिधारे
1: नेम अनेक
0: बे पुराण कते पुराण जमीन जमान सबान के पिख है।

परे मन मैं कर पर्वत पंख हल्ले न हलेंगे। श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। तोर दे सुमलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया। साहिब श्री सबको सरनायक जाचक नेक सो एक दिवैया। जी जिते जल में जल में बलि बल में सब थाप थपेंगे। सात समूह पर सन करे जग सतर सब अब लोग छपेंगे। कोट स्नान का जादिक दान अनेक स्वयं पर साज भरेंगे। जे नर श्री पद के प्रश्न है पग ते नर फिर न दे तरेंगे। नाथ श्री ओलिए सात समुद्र न लोक गयो पर लोक गवायो। साच कहो सुन रहे हो सब जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभु पायो। काहू लग

0: के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश घंता।
1: काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा।
2: काल जो की सभी हो वेद राज में ज्योति हो
0: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार।

चिकन को सिर्फ गुण सुख दियो, सतरन को बल मोहब्बत कियो। चीटी ते कुंचर असूला, सब पर कृपा दुष्कर फूला। एक एक की पीर पछाने, कट कट के

महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नैत तुमरा लखाना जाय पसारा कै बिर सजा प्रथम संसारा अंडज रसे तचकीने उत्पुछ खान बहुर रच दीनी सगरी सृष्ट खाए चंबवा जुगात स्वरूप से अंबव दुष्ज थे उठवत उठपाता सगन मलेश करो रण काता पूरख चवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्टरे तत्काला रिद्ध सिद्ध घर मो सब होई दुष्ट छाछ सके न कोई।

सोई दुख न तिसे ब्यापत कोई अड़िल। दुख दर्द पौ निकट न ते नर के रहे, हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई। पादर सुदिय समीर विवारा, तीर सतत्रव ग्रंथ सुधारा सोईया। राम रहीम पुराण कुरान, नेक है मत एक न मान्यो। श्री सपान कृपा तुमरी,

0: पानी लेवे भाजू क्या करे बेचारिया।
1: तुझ बात समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया।
0: हे सुनो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया।
1: कहे नानक लेवे भाजू क्या करे बेचारिया।
0: आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाने
1: जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया।
0: कर कृपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया।

अमृदास परसिय पोहम पातिक विनाश गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधिक आसस है तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहिले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटीए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीए सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहदे साहो जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसाहो सतनाम

तेतु की आसा मनसा बंद नहीं पाई, कर्म धर्म बंद करी, पाप पुन जग जाया पाई, बिनसै नाम विसारी, आसा मनसा बंद नहीं पाई, कर्म

कन हर बूंद बसहु रुमावल, कुसुम बसंत गणंत न आवै। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन पल उन्हें जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बण आवै। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योतरली

अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसमदी नूर अरसों तुरसों चटी है तुद डिठी सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हांदसाहो जिस पास बहिठिया सोही है